0: ये स्क्वीज बचाना,
1: स्क्वीज बचाना।
0: एक्सेल रहा
1: एक है
0: नाउ तो शेक ये लूस
1: Inhale.
0: Exhale down.